का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना, हाँ जिंदगी ये कहे।

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी।

वैरी मीत च फर्क न कोई, हर ख सोग दोए सम कर जाने। तेरे तोतले बोल प्यारे, हर एक नू पे देन सहारे।

है ये किस काम का, तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा है ये बस नाम का, आदमी तू अगर आदमी ना बना, तो ये जीवन भला है ये किस काम का।

है ये किस काम का, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने।

सदा उसकी ही मौज में, खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में। दास सच्चा वही तो है भगवान का, खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में। दास सच्चा वही तो है भगवान का, तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

0: तो वो मैनूं लगता है कि पायलट वगैरह भी बन सकता
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, एनडीए एक बहुत बढ़िया है, साढ़े को बच्चे जाते हैं इस टेस्ट देने जाते हैं एनडीए का, पर मैं देखा कि पास आउट पास परसेंटेज जी रिटर्न इन्नी ज्यादा नहीं होंगी।
0: जी।
1: कारण यह है कि बच्चे प्लस वन के स्पेशली मैं देखना कि नॉन बोर्ड क्लास होने करके
0: हाँ जी
1: बच्चे इन्ना हार्ड वर्क नहीं करते,
0: सीरियसली नहीं नो
1: नहीं
0: लेते
1: लेंदे,
0: मतलब।
1: और वो जरा सिलेबस जरा है वो ना किते होने करके एनडीए के बच्चों क्लियर नहीं कर पाते मैं देखना।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण ने विषय नुक्ता है कि मैं देखता कई बार साढ़े को बच्चे आते कई बार कि वह कहे सर 6वीं तो लैके 10वीं तक का सू हिस्ट्री की बुक चाहिए है मैथ की बुक चाहिए है वो की करनी भाई
1: ठीक
0: मैं फलाना टेस्ट तैयार कर रहा जी वो उन्होंने एक सवाल आने हैं।
1: हाँ जी हाँ जी
0: ये बड़ी वड्डी तुसी जिहड़ी अहम गल जिहड़ी कीती आ कि जिहड़ियां क्लास इक तां बच्चे नूं मैनूं लगदा कि अपनियां किताबां कदे बेचणियां नहीं चाहीदियां
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जिहड़ी मर्जी क्लास दे होए कोल ही
1: जी।
0: रखे क्यों
1: दूसरे दूसरे जिहड़े नॉन बोर्ड क्लासां नूं बिल्कुल हल्के तरीके नाल जिहड़े बच्चे लै लैंदे आ वो
0: वो
1: भी
0: सीरियस
1: बड़ा
0: गल है
1: बहुत
0: वो।
1: ज्यादा नुकसान करदे आ अपना।
0: हाँ बिल्कुल जी
1: और एनडीए दे विच मतलब अच्छा स्कोप है, और गल उत्थे ही है कि एनडीए दे विच भी जदों अगे इंटरव्यू फेस करदे आ बच्चे उदों भी मैं देखिया कि पास परसेंटेज अगे बहुत घट हुंदी है, अराउंड 1 or 2% जिहड़े बच्चे आ उही एनडीए चो पास हुंदे आ।
0: बहुत
1: ईवन
0: घट है
1: तुसीं सुनदे ही हो कि इंडियन आर्मी दे विच ऑफिसर की किन्नी कमी है,
0: बहुत कमी है
1: और
0: बहुत कमी
1: 35-40 हज़ार। वो कारण की है कि ऑफिसर उन्हां नूं चाहिदे हुंदे आ बोल्ड बैलेंस्ड लीडरशिप
0: वो
1: क्वालिटीज,
0: वाले
1: वो
0: बिल्कुल
1: वाले चाहिए, पर
0: बिल्कुल
1: साढ़े बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे है वो इन्हां क्वालिटियों के पिछे हैं, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पढ़ाई दे जेड़ा
0: हाँ
1: पढ़ रहा वो किताबी कीड़ा बनया हुआ है,
0: किताबी कीड़ा
1: वो ये
0: बने
1: सोच नहीं रहा कि मैनू अच्छी फिजिक्स भी चाहिए है,
0: हाँ
1: मेरे च होर भी क्वालिटियां होनी चाहिए, आई शुड बी लीडर,
0: बिल्कुल वो
1: आई
0: चीजा नहीं
1: शुड बी
0: पैदी
1: डिसीजन मेकिंग मेरे च होनी चाहिए। बैलेंस्ड ऑफिसर आर्मी नु इस करके नहीं मिल रहे क्योंकि बच्चे की डिवेलपमेंट बैलेंस नहीं हो रही, जिस तरह की आप पहले भी गल कर रहे
0: ये
1: हैं।
0: साडे बिल्कुल जी स्कूलों के पद्धर से कह लो भी
1: हाँ
0: कोई
1: जी
0: कितना कितने
1: कि
0: कमियां
1: कमी
0: नहीं
1: रहेगी, कमी रहेगी जी।
0: बच्चों का भी ऐडा कसूर नहीं आप कहते भी होगा
1: नहीं बच्चों
0: गलत
1: का
0: है
1: नहीं कसूर, तो बेसिकली
0: सिस्टम
1: उन्होंने
0: का आप।
1: डिवाल एक आपां पौधा लगाया हुआ,
0: हाँ
1: वो
0: जी हाँ
1: पौधा तो बड़ी अच्छी ब्रांड का लैंदा, असीं
0: हाँ
1: उन्हें अच्छी तरह फीड नहीं दे रहे, अच्छा पानी नहीं टाइम सिर दे रहे, तो वो फुल वधिया थोड़ी दूगा
0: उन्हें
1: सानू।
0: सही कोई डायरेक्शन नहीं
1: हाँ
0: अपन
1: जी
0: दे
1: हाँ
0: पा
1: जी
0: रहे
1: सो पेरेंट्स ते टीचर्स का रोल जेड़ा है वो होना चाहिए कि वो बच्चे के बिचों कटना पोटेंशियल बाहर कटना है, ना कि
0: मैं
1: बच्चे को कुट मार के वो चीजा बाहर कटना जाए
0: हाँ तुसी हुण
1: दबा है।
0: कहावत भी है कहिंदे तुसी घोड़े नूं कुट कुट के दरिया तक ले जाओगे पर उन्हूं धक्के नाल पानी नहीं पिला
1: पानी नहीं
0: सकते
1: पिला
0: जो तक
1: सकते,
0: वो आप ना चाहे पीना
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: उन्हूं
1: बिल्कुल
0: कुट के नहीं पिलाया जा सकता।
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो ये मैं देखता कि जिहड़ी शख्सियत है उहदा बहुपक्खी विकास होना जरूरी है कलिया
1: जरूरी है
0: किताबां पढ़ के नंबर बहुत गोल्ड मेडल
1: बिल्कुल जी
0: लाया
1: बिल्कुल
0: उहदे नाल
1: बिल्कुल
0: गल
1: बिल्कुल जी
0: वो एक
1: बिल्कुल
0: पासा हो गया दूजा पासा तुसीं अपना कमजोर कर लिया
1: दूजा कमजोर कर लिया जी
0: वो
1: बिल्कुल
0: बहुत जरूरी है
1: हाँ
0: सेहत
1: जी
0: का होना भी जरूरी है
1: अच्छी सेहत है,
0: खेलां
1: होर क्वालिटीज बहुत है जिहड़ियां। और ईवन और मैं एक तुहानूं होर गल दस रहा कि साडे को बच्चे आ रहे हैं बीटेक करदे आ, फाइनल ईयर च हुंदे आ, एमटेक फाइनल ईयर च आ रहे
0: हाँ जी हाँ
1: हैं, वो
0: जी
1: सर आके गल करदे सर साडे विच बोलन दी स्किल नहीं है साडे च, असीं इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाउंदे, मैं तो सर हुण इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं,
0: कर रहे
1: और
0: हाँ जी
1: इन्हां बच्चों नूं जदों साडे कोल पढ़दे सी मेरी कोशिश है कि बच्चे कोलों बुलवाना कोई डेफिनेशन बोल तू भी
0: जी जी
1: इंग्लिश
0: जी जी जी
1: बोलो ताइयों
0: वो
1: मतलब
0: झाका एक जरा जरूर
1: निकल,
0: हो जाएगा
1: बेसिकली तो झाका ही हुंदा,
0: झाका ही हाँ
1: आईलेट की कोचिंग लै रहे बच्चे,
0: जी
1: वो
0: वो
1: मैं तो कहता कि जेडे बच्चा क्लास च इंग्लिश मीडियम च पढ़ रहे जे बच्चा कोलों बुलवाया जाए बार बार चीजां नूं, तो उन्हें लोड़ ही
0: जरूरत
1: नहीं
0: ही नहीं
1: कोचिंग्स
0: है
1: दी,
0: जरूरत ही नहीं
1: दे
0: है
1: कैन डू अपने आप ही इस चीजें जो मतलब अच्छे अच्छे बैंड ले सकते,
0: मतलब सुभाविक तौर ते बन सकते हैं वो
1: बिल्कुल जी
0: कोई ऐडी
1: बिल्कुल
0: गल नहीं।
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो बच्चे का जिहड़ा डिवेलपमेंट जदों तक नहीं होंदी चारों पासे वाकई एनडीए दे विच ना जाना एक चिंताजनक गल है।
1: बिल्कुल जी
0: मैं पिछे जे कोई देख सुन रहा सी किसी का लैक्चर वो कहिंदे कि देखो पंजाब दे सरकार ने दो स्कूल बनाए माई भागो अकैडमी है ते दूसरा महाराजा रणजीत
1: बिल्कुल।
0: सिंह जिहड़ी आ
1: और हाँ
0: प्रेपरेटरी
1: एक बड़ी खुशी की गल है जी कि
0: हाँ
1: इस
0: जी
1: बार जरा बच्चा एनडीए के विच टॉप किया है
0: हाँ
1: जो
0: जी
1: पास आउट हुए वो महाराजा रणजीत सिंह अकेडमी का बच्चा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ
1: हाँ
0: जी हाँ
1: जी
0: जी
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: बड़ी खुशी दी गल
1: हाँ जी
0: है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ते वो पंजाब सरकार दा अच्छा एक उपराला
1: बिल्कुल
0: रहा
1: जी
0: ते अच्छी देन है
1: हाँ जी
0: ते वो उन्हां दे जिहड़े जनरल जिहड़े सीगे आई पी सिंह जी माई भागो दे
1: हाँ जी
0: ओहदे विच लड़कियां दे लई बनाया होया वो कहिंदे कि देखो जी इहदे विच सानू अज तक पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दा कोई भी बच्चा इहदे साडी अकैडमी च दाखिल नहीं होया।
1: ठीक ठीक ठीक
0: मैं कहा
1: ठीक
0: ये की गल है जी कहिंदे जी देख लो हुण ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ,
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
0: ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਔਰ ਆਫੀਸਰ ਬੋਲਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ,
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਤੇ ਉਹੀ ਲੀਡ ਕਰੇਗੀ ਮਿਲਟਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ,
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ
1: ਜਾਏ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਜੇ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਰਿਸਕ ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਫਰੰਟ ਤੇ,
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ,
1: ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
0: ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ,
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
0: ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 25 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬੈਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੁਸਤ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਆ ਐਕਟਿਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
1: ਠੀਕ ਠੀਕ,
0: ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਜ਼ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਅਕੈਡਮੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਆ, ਜਿਹ ਚ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਵੀ,
1: ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ,
0: ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ,
1: ਹਾਂਜੀ,
0: ਇੱਕ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਉਹਦਾ,
1: ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਜੀ
0: ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ,
1: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੋਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ?
1: ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ,
0: ਹਾਂਜੀ,
1: ਔਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਕੋਪ ਹੈ,
0: ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ,
1: ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਪੈਕੇਜ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਐੱਸ ਸੀ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਹਨ,
0: ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ,
1: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਤੇ ਮੈਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁੜਦਾ ਨਾਲ,
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
0: ਮੈਥ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜੀ?
1: ਮੈਥ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ
0: ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ,
1: ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਰ,
0: ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦਾ।
1: ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ 2-4-5 ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਮੈਥ ਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ,
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
1: ਸੋ ਮੈਥ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਦਾ ਇਨ ਇਟ ਸੈਲਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਇਓ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ।
0: ਮਤਲਬ ਮੈਥ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਉੱਗਣਗੇ,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
0: ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਈ, ਔਰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
0: ਤੋ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।